0: this world, he was made as the Son of Man.
1: जब इस दुनिया में आए वो मनुष्य के पुत्र बन गए.
0: But after his resurrection, he went back to heaven as the high priest.
1: जब वो स्वर्ग में वापस गए तो वो महायाजक या बड़ा काहिन बनकर गए.
0: The book of Hebrew presents Jesus as the most high priest.
1: और इब्रानियों के खत में यीशु मसीह को महायाजक के तौर पर पहचाना गया.
0: The Bible says the book of 1 John chapter 2 verse 1.
1: और दूसरा पहला अध्याय जो है पहला यूहन्ना उसके दूसरे खत में लिखा है.
0: It says, my little children, I write these things to you that you do not sin.
1: और वो कहता है कि मैं इसलिए आपको ये खत लिखता हूँ कि आप गुनाह ना करें.
0: If someone has sinned,
1: अगर किसी ने गुनाह करा है,
0: we have a great advocate, that is Jesus Christ, on the right hand of the Father.
1: हमारे पास बड़ा एक वकील है जो खुदावन के और

थैंक यू इनोश हिज सन उनके बेटे साथ आए हुए हैं. खुदा उनके दास दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहे हैं वर्शिप के थ्रू से, अपनी जिंदगी के थ्रू से उनको खुदावन फार एंड वाइड डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड द लॉर्ड इज यूजिंग देम एंड यूजिंग हिम टू ब्रिंग ग्लोरी टू द नेम ऑफ द लॉर्ड. चर्च वुड यू वेलकम देम इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. पास्टर जी प्लीज कम.

डियर फ्रेंड्स इन जीसस नेम, आप सभी का मैं बैतलहम पंजाबी चर्च की इस वेबसाइट में स्वागत करता हूं। और मैं जानता हूं आप शायद इस वेबसाइट पर अचानक से आ गए होंगे, या गलती से आपका यहां पर आना हो गया होगा, या किसी ने आपको बताया होगा। वजह कुछ भी हो सकती है, परंतु आप इस दुनिया में अचानक से नहीं है, आप एक्सीडेंट से नहीं है, या किसी गलती का नतीजा नहीं है। परमेश्वर ने आपको किसी खास मकसद और योजना के साथ भेजा है, इसलिए आप अपनी जिंदगी को उतना ही गंभीरता और संजीदगी और सीरियसनेस के साथ लीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में एक मकसद रखा है। पवित्र वाणी कहती है कि आप इस दुनिया में निराश होने के लिए, परेशान होने के लिए, दुखों में, मुसीबतों में, परेशानियों में और दुनिया भर के उलझनों में रहने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने आपके लिए एक अच्छी योजना बनाई है, जो कि आपको आशीष करें, आपको बरकत दें, आपको जिंदगी की ऐसी अच्छी चीजों से नवाजें कि आप एक खुशहाल, शांति भरी, भरपूर जिंदगी जी सकें। इसलिए आप परमेश्वर के वचन को जानें। आज अगर आप किसी परेशानी में से होकर गुजर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर को जानें, अपनी जिंदगी में अपनी गलतियों को, गुनाहों को मानकर प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें और अपनी जिंदगी में एक भरपूर जिंदगी को ग्रहण करें। वाणी कहती है कि परमेश्वर ने इसीलिए हमें भेजा है कि हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर के साथ अच्छी तरीके से व्यतीत कर सकें। आप इस वेबसाइट में जैसे ब्राउज करते हैं, बहुत सी चीजें आपके लिए है। आपके लिए यहाँ पर पवित्र वचन के सॉन्ग्स हैं, वर्शिप सॉन्ग है, म्यूजिक है, बहुत से आर्टिकल्स है पढ़ने के लिए, ताकि आप और परमेश्वर को नजदीकी से जान सकें। इसके साथ साथ आपके लिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे आप परमेश्वर को जान सकते हैं, अपने घर बैठे पढ़ कर किताबों के जरिए से, बाइबल के पवित्र वचनों से, और कई और चीजें आपके लिए उपलब्ध हैं, ताकि आप गवाहियों को पढ़कर भी और मजबूत हो जाएं। मेरी प्रार्थना विनती यह है कि आप प्रभु को और नजदीकी से जानें। बैतलहम पंजाबी चर्च की सेवकाई आपके लिए इसीलिए है कि आपको बरकत दें, आपको परमेश्वर के करीब लेकर आए और आपकी सेवकाई करें। अगर आपके पास कोई प्रार्थना की विनती है या कोई ऐसी बात है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, प्रेस रिपोर्ट है, हमें लिखिएगा, प्रार्थना की विनती भी हमें लिखिएगा, हम आप सबके लिए प्रार्थना करते रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू एज यू कंटिन्यू टू ब्राउज दिस वेबसाइट एंड एंजॉय गॉडली वंडरफुल म्यूजिक, वर्शिप सॉन्ग्स एंड रीड आर्टिकल्स एंड नो गॉड ऑल द मोर। गॉड ब्लेस यू, रिपेंट ऑफ योर सिंस, नो गॉड पर्सनली एंड ड्रो क्लोजर टू हिम, worship him, find a good church and be there. If you want to come to us, find out our address

Chiesa. तो उस जमाने के जो फकीर ऋषि थे, जो सरदार थे, वो उसको पकड़ कर खुदा यीशु मसीह के पास ले आए कि खुदा यीशु मसीह पर फतवा लगाए। वो उसको मारते हुए, उसको जिद करते हुए, उसको लहूलुहान करके वो खुदा के पास ले आए। तो खुदा यीशु मसीह ने उस वक्त ये फरमाया कि तुमने इसको पहला बनकर वो शख्स मारे जिसने कभी गुनाह ना किया हो। तो वो औरत खुदा यीशु मसीह के कदमों में गिर पड़ी और रोना शुरू कर दिया। तो उसी सोच को, उसी मंजर की निकासी करते हुए शायद इस गीत में बड़ी खूबसूरत आवाज में

जिन्होंने हदिया दे लिए, जिन्होंने दे लिए वो खड़े हो जाएं, और जैसे जैसे आप देते जाएं हदिया खड़े होते जाएं। अब गहरी हजूरी का वक्त आन पहुंचे, लेने का वक्त आन पहुंचे खुदावंद से, उसको जलाल देते जाएंगे और हम उससे लेते जाएंगे। यीशु नाम में

beautiful smile. Yes, go. सब तैयार है? आप तैयार हैं? Amen. जल्दी से आओ, जल्दी से आओ. Time नहीं है हमारे पास, जल्दी से आओ. Come on, everybody. Are you ready, girls? Okay, let's have the music, brother. साधना

0: बोलिए, मैं और मेरा घराना।
1: मैं और मेरा घराना
0: यीशु मसीह के साथ रहेंगे।
1: यीशु मसीह के साथ चलें,
0: यीशु मसीह से बात करेंगे।

0: आत्मा से बात करेंगे,
1: आत्मा से बात कर,
0: दुख जो हमें याद आए,
1: दुख जो हमें याद आए,
0: आत्मा से बात करेंगे,
1: आत्मा से बात करेंगे,
0: मैं और मेरा घराना,
1: मैं और मेरा घराना,
0: यीशु मसीह के साथ रहेंगे,
1: यीशु मसीह के साथ चलेंगे,
0: यीशु मसीह से बात करेंगे,

0: आपकी बारी है, गाइए मैं और मेरा घराना।
1: मैं और मेरा घराना
0: यीशु मसीह के साथ रहेंगे,
1: यीशु मसीह के साथ रहेंगे,
0: यीशु मसीह से बात करेंगे,
1: यीशु मसीह से बात करेंगे,
0: यीशु मसीह से प्यार करेंगे।